प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पड़े।

लिखा ताला।

छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रतु बाला, खुली जाए बंद अकल का।

0: राम राम मंडळी. मी डॉक्टर राजेश नामदेव आहे, म्हणजे तुमचा लाडका बाळू. बाळू ऑन एअर मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मंडळी, आयुष्यभर जेवून जगायचं का औषधं खाऊन जगायचं? आपण आहे ना जेवणाला एंटरटेनमेंट समजायला लागलोय. गेलो, भूक लागली नाही, अरे चांगला पिक्चर पाहायला लागलाय, चला पैसे खिशात पहा, अरे अच्छा खाना दिख रहा है, कोई बोला इधर अच्छा मिलता है, पैसे खा लो. म्हणजे असं पूर्वी म्हणायचे की दोन तास खा, तीन तास लावा, भूक लागली तरच खा, तसा काही आयुष्याचा संबंध राहिला नाही. आणि त्याच्यामुळे औषधांना श्रीमंत करण्याच्या नादात आपण अन्नाशी वैर करून बसलो आणि त्या अतिरेकी अन्नामुळे आपल्याला आजार व्हायला लागले. पण तेच अन्न आपल्यावर कृपा करून आपल्याला चांगलं सुद्धा करू शकतो, याच्यासाठी बोलण्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहे न्यूट्रिशनिस्ट डायटिशियन रिष्टी मेहता. रिष्टी राम राम.
1: राम राम सर, नमस्कार. सगळ्या मंडळींना माझा नमस्कार.
0: रिष्टी, सबसे पहले ठंड शुरू हो रही है
1: जी,
0: बारिश हो गई है
1: जी,
0: तो अभी डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए?
1: ओके. जैसे ऋतु बदल होती है तो आपकी बॉडी को भी उसको यूज टू होने के लिए आपको थोड़ा बॉडी में चेंजेस और डाइट में चेंजेस करना बहुत जरूरी है. जैसे हमने बारिश के सीजन में थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाया, हरे पत्ते वाली सब्जियां कम खाई होगी. अभी गणपति हुए हैं तो हमने मोदक खाए हैं, बहुत सारा फेस्टिव खाना खाया है. तो जब ठंडी की सीजन आ रही है तो हमें हमारी डाइट में कुछ एक्स्ट्रा हाई प्रोटीन वाला, थोड़ा हाई फैट वाला खाना इंक्लूड करना चाहिए. जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हम ठंडी में लड्डू बनाते हैं, बराबर. लेकिन अभी लड्डू की तो बहुत सारी वैरायटी हो गई. हम सिर्फ गोंद के और लड्डू नहीं खाते हैं, राइट. हम अभी फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं, पम्पकिन सीड्स, मस्कमेलन सीड्स, पता नहीं कौन से टाइप्स के सीड्स बनने शुरू हो गए हैं. तो जो ऑथेंटिसिटी है या हमारा जो खाना है, उस हिसाब से ही आपकी डाइट में ठंडी में आपने लड्डू इंक्लूड करने चाहिए. अगर आप नॉर्मल वेट है तो दिन में एक से दो लड्डू खा सकते हैं. वजन आपका ज्यादा है तो दिन में एक छोटा सा ही लड्डू खाइए. किसी भी चीज का ओवरबर्डन, एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक ना करें, ठीक है. और घी और तेल को पूरी तरह से आपकी डाइट में से कम ना करें. थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन में अगर खाते रहेंगे तो ठंडी को वेलकम करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा.
0: रिष्टि, मेरे को एक बात बता, पहले हम लोग बहुत घी खाते थे
1: जी,
0: फिर अचानक भयानक घी के प्रति हमको दुश्मनी करने को
1: हाँ
0: आप लोगों ने मंजूर किया.
1: हाँ,
0: आप लोगों ने मतलब साइंस ने.
1: जी, साइंस ने.
0: और आप वापस कह रहे कि दिन में दो चम्मच तो घी खाना ही चाहिए घर का बना हुआ.
1: जी देखो, घी का नेचर क्या है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है. सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में सबसे कम प्रपोर्शन में होने चाहिए. दूसरे जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड बोलते हैं, जो बेसिकली वेजिटेबल ऑयल में से आता है, या आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें से 3 पोर्शंस वो होना चाहिए और दिन में एक ही पोर्शन आपका सैचुरेटेड फैट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1-2 टीस्पून.
0: सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का मतलब?
1: सैचुरेटेड फैट जो समझ लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी अगर वो थिक है, जैसे घी है, बटर है, लोनी है, चीज है, तो ये सब चीजें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कड़क रहती है, उसका सॉलिड होता है नेचर, तो उस चीज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. और मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब जो वेजिटेबल ऑयल है रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल है, इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नहीं होता है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. तो दोनों चीज का बैलेंस बॉडी को चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ वेजिटेबल ऑयल ही खाना है या सिर्फ घी ही खाना है. अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अरे घी तो अभी बहुत अच्छा है, सब सब्जियां भी घी में बनाते हो, दाल भी घी में बना रहे हो, रोटी भी घी में बना रहे हो. नहीं, उतना हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना आपकी बॉडी को बचेगा
0: नहीं.
1: नहीं नहीं नहीं, 2 चम्मच से या 1 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर श्योर. हाँ, एज ग्रुप भी मैटर करती है, कौन से एज ग्रुप में हो आप. लेकिन जो जनरली अभी इंडियन पॉपुलेशन हम देख रहे हैं तो ओबेसिटी की तरफ बढ़ रही है, लठ्ठपना जो बोलते हैं उसमें बढ़ रही है, तो पेट का घेरा तो सबका बड़ा हुआ है, ठीक है ना. तो उस मामले में अगर आपका पेट का घेरा बड़ा हुआ है तो आपको 1-2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. अगर आप यंग एज में ग्रुप में हो, जैसे आप टीनेज में हो या बच्चे हो, तो 3-4 चम्मच भी दिन में घी खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
0: वो बंद कर सकते हैं,
1: वो बट ग्रोइंग एज में है ना.
0: अच्छा.
1: तो उनको उतना घी अलाउड है. जैसे हम 25-30 क्रॉस कर लेते हैं तो उसमें हमारा 2 चम्मच पे ही रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और जैसे एज बढ़ेगी तो आप 1 चम्मच पे भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. तो उतनी ही जरूरत है. कोई भी चीज का फैड या आप यूट्यूब पे देख के बोल रहे हो कि घी वाली कॉफी पियो या घी वाला ये खाओ, नहीं होता है. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी मेन जरूरत है.
0: और हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं
1: जी,
0: तो महाराष्ट्र के लोगों ने तेल कौन सा खाना चाहिए?
1: तेल 3 प्रकार के होते हैं. एक तो होता है फिल्टर्ड, रिफाइंड और कच्ची घानी का, या हम जो बोलते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल, जो अभी आजकल सब मार्केट में बहुत इजीली मिल रहा है। तो अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो शेंगदाने का तेल सबसे अच्छा है, लेकिन जैसे उसमें भी थोड़े से मूफा पुफा का वेरिएशन रहता है, तो मैं बोलूंगी हर एक टाइप का ऑयल आपको चेंज कर करके यूज करना चाहिए। अगर आप सैचुरेटेड खा रहे हो या आप कोल्ड प्रेस खा रहे हो या फिल्टर्ड खा रहे हो, तीनों में फिल्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे कच्ची घानी का होगा तो उसमें थोड़ा इम्प्योरिटीज होती है, लेकिन वो प्योर है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है।
0: मूंगफली तो अपन एज इट इज खाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज कैसे आएगी?
1: रहता है ना उसके फाइटेट्स रहते हैं, उसका स्किन रहता है, वो निकाल के फिर तेल बनता है ना।
0: नहीं मगर अपन मूंगफली तो खा लेते हैं
1: उतना कम प्रपोर्शन, लेकिन जब हम तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रपोर्शन बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। और क्वांटिटी हम ध्यान में, अगर हमको लगता है कच्ची घानी का तेल अच्छा है, उसको ब्रांडेड किया गया है, इस तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो हम वो ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
0: समझ लो चार बंदों की फैमिली है,
1: जी,
0: दो बच्चे
1: जी,
0: माँ बाप, तो उन्होंने महीने में
1: कितना तेल,
0: कितना शेंगदाने का तेल कच्ची घानी का
1: जी
0: कोल्ड प्रेस ऑयल लाना चाहिए घर में?
1: जी सबसे पहले कोल्ड प्रेस रहे या कोई भी टाइप का ऑयल रहे, प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट है। अगर आप चार लोगों का पूछ रहे हो तो महीने में 2 किलो से ज्यादा नहीं इस्तेमाल होना, बिल्कुल भी नहीं। जैसे बच्चों का मैंने बताया तो आप उसमें घी ऐड कर सकते हो।
0: तो कहते ना यार कि अगर तुम ऑयल घी कम खाओ तो शरीर में एक ड्राइनेस आ जाता है, स्निग्धता नहीं रहती है।
1: जी आपको अगर एक मील खा रहे हो, अगर उसमें 5 ग्राम तेल है या 1 टीस्पून ऑयल है और 1/2 टीस्पून घी है, तो इतना इनफ है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आप 3 मील्स खा रहे हो तो 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच घी, ऐसे आपका चला जाता है, उतना आपकी बॉडी को इनफ है। लुब्रिकेशन के लिए बोलो, ऑर्गन मेंटेनेंस के लिए बोलो, ब्रेन हेल्थ के लिए बोलो, जॉइंट हेल्थ के लिए बोलो, या न्यूट्रिटिव एब्जॉर्प्शन के लिए।
0: लोग घी बहुत खाते हैं इसलिए बहुत हुशियार रहते हैं मैथमेटिक्स में, व्यापार में, वो सही है क्या?
1: ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके लिए हमें फ्लैक्सीड्स का ऑयल हमारे डाइट में लेना चाहिए, फ्लैक्सीड्स खाने चाहिए।
0: फ्लैक्सीड्स को जवस, मराठी में
1: जवस, ठीक है।
0: तो जवस हमारे डाइट में पहले से ही था,
1: लेकिन उसकी चटनी बनती थी, है ना?
0: तो तेल लाना चाहिए।
1: हाँ, वो रॉ फॉर्म में जब आप खाते हो, चटनी क्यों बनती है कि उसका जो फाइटेट्स है वो कट डाउन हो जाता है जब आप उसको मिक्सी में से ब्लेंड करते हो। अगर आप डायरेक्ट फ्लैक्सीड रोस्ट करके खा रहे हो तो आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं जितना आप उसको कोसली ग्राइंड करके या थोड़ा सा कूट करके जैसे बोलते हैं वैसे आप इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स है उसके, राइट? तो कोई भी तेल घी खाओ लेकिन प्रमाण में खाओ, ठीक है। अगर कोई भी चीज का मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मूफा ज्यादा है, पुफा ज्यादा है,
0: शॉर्ट एक बंदे ने महीने में 0.5 लीटर
1: से ज्यादा नहीं लेना चाहिए,
0: और घी
1: सब मिला के,
0: क्या बात कर रहे
1: हैं? हाँ, घी तेल मिला के, दैट्स इनफ। यस यस, स्ट्रिक्टली जिस तरह से इंडिया का रेट बढ़ रहा है, फेस्टिवल के दिन हो तो फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा कर लीजिएगा, थोड़ा डाइट आपको मेंटेन करना, कैलोरी बैलेंस करना बहुत जरूरी है,
0: एक्सरसाइज भी करनी।
1: हाँ, एक्सरसाइज भी जरूरी है।
0: अच्छा।
1: पहले जब हम खाते थे ना, सुबह प्रभात फेरी के लिए जाते थे, है ना, भगवान के दर्शन को जाते थे, हिल चढ़ते थे, फिर आके हम ये सब खाते थे, तो ऑलरेडी हमारी कैलोरी बर्निंग हो चुकी रहती थी, तो वो बैलेंसिंग रहता था। अब हम उठ के सीधा फराड खाना शुरू कर देते हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है, फिर आप बोलते हो कि वेट बढ़ गया करके।
0: अच्छा, अभी ये तो हुआ विंटर्स का डाइट,
1: जी,
0: और कुछ बोलना है वो विंटर्स के डाइट के बारे में?
1: नहीं, ठीक है।
0: और वेज नॉन वेज के बारे में क्या कहना है तुम्हें?
1: वेज नॉन वेज में अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप ऑफ कोर्स वेजिटेरियन ही स्टिक करिए। नॉन वेज के केस में ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि एक तो डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे बढ़ गए इंडिया में, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ चुके हैं। तो अगर आपका जो नॉन वेज खाने का या पचाने का तरीका ठीक नहीं है तो आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, जिससे आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ सकते हैं। जो कुछ टाइम पहले रिसेंटली एक डाइट बहुत वायरल हुआ था जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करके सुना था शायद,
0: केटोजेनिक,
1: नहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट,
0: डाइट का नाम ही एंटी इन्फ्लेमेटरी था।
1: तो बॉडी में सूजन होती है ना, इन्फ्लेमेशन होती है, तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी की सूजन कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपका वेट लॉस ईजी हो जाता है। तो उसमें नॉनवेज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। क्योंकि पहले के जमाने में जब हंटर गैदरर बोलते थे कि हम जब सिर्फ 4-6 महीना हंटिंग करते थे, उसके बाद बैठते थे, खाते थे, फिर वापस हंटिंग के लिए जाते थे, राइट, तो तब नॉनवेज खाना समझ में आता था। या पुराने जमाने में जब हमारे यहाँ पे वार त्यौहार होते थे, बलि चढ़ाते थे, तो वो कैसे दिवाली में या दशहरे में कभी एक बार वो कट करके वो स्लॉटर करके फिर वो एनिमल को खाया जाता था, या गांव खेड़े में जाके वो गाउटी चिकन बनता था, तो उस टाइप का चिकन अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में एक बार खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बॉयलर मिल रहा है या प्रोसेस्ड मिल रहा है,
0: इंजेक्शन वाला चिकन,
1: जी एब्सोल्युटली इंजेक्शन वाला है।
0: ए, फिर मेरे एग्स,
1: हाँ,
0: अभी वो चिकन्स को
1: जी
0: पूरा हार्मोन्स पे बढ़ाते, इंजेक्शन पे बढ़ाते,
1: जी जी,
0: तो उसके एग्स, एग में भी तो आता होगा ना?
1: ऑफ कोर्स आता है ना, ऑफ कोर्स आता है।
0: तो फिर ये जो रिकमेंड करते हैं कि कंप्लीट फूड है एग, इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें?
1: अगर वेजिटेरियन मतलब सॉरी वो ऑर्गेनिक है,
0: ऑर्गेनिक मिलने की
1: मतलब गाउटी है,
0: मिलता है,
1: ढूंढना पड़ेगा अगर आपको छाना
0: है, पड़ेगा।
1: हाँ, वो तो बेस्ट ही रहेगा अगर आप पालते हो तो, ठीक है, लेकिन आज के जमाने में मुझे लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो प्योर अगर मिल रहा है तो खाओ, अगर नहीं तो महीने में एक बार खाओ, ज्यादा मत खाओ।
0: एक भी महीने में एक बार?
1: हाँ, अगर आपको हेल्थ प्यारी है,
0: सीरियसली?
1: हाँ जी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ज्यादा तो आप प्योर ढूंढ के, ऑर्गेनिक ढूंढ के ले सकते हैं, जो गाउठी अंडे बोलते हैं या गाउठी चिकन बोलते हैं। जैसे अभी ये चिकन्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं, आई एम नॉट 100% श्योर इस पे, लेकिन उनको इंजेक्शन, जैसे आपने बोला हार्मोन इंजेक्शन देते हैं,
0: एग में भी हार्मोन्स आ जाते हैं।
1: हाँ जी है,
0: हो गया, रिसर्च हो गया।
1: देखो कोई भी रिसर्च उठा लो उस पे स्पॉन्सर्स रहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो आप उस पे 100% लिए नहीं बोल सकते हो कि वो कौन से एज ग्रुप के लिए किया गया है, कौन से एरिया के लिए किया है। अगर आप रिसर्चेस देखते हो,
0: फॉरेन में थोड़े स्ट्रिक्ट है, हमारे इधर की चिकन को जो खिलाते हैं
1: जी, और जो रिसर्चेस मेनली होते थे ना, ये चिकन का छोड़ के मैं अगर बात करूं, तो पूरा मेल्स पे होते थे, फीमेल्स पे अभी अभी होना शुरू हुआ है। जो मेडिकेशंस जो बनाई गई है वो ही मेडिकेशंस फीमेल को देते हैं आज भी, ठीक है। तो वो जो रिसर्च है वो कहाँ से है, कितना ऑथेंटिक है, वो जानना जरूरी है। वो चिकन को जो इंजेक्शन दिया गया है उसके बाद अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो गया है, उसके बाद वो आपको मार्केट में मिलता है। तो जस्ट इमेजिन आप कौन से टाइप का चिकन खा रहे हो। सब चीज में नहीं होगा शायद, लेकिन जो ओपनली मिलता है शायद वहाँ पे जरूर ये चीज हो सकती है।
0: ऋषि, अभी तुम आई हो डाइट और डिसीजेस पे,
1: हाँ जी,
0: तो मेरे को एक बात बताओ, यू डिसाइड द डिसीजेस और उस पे किस कारण होता है?
1: अच्छा,
0: उसमें डाइटरी इंटेक्स कैसे सुधारनी चाहिए
1: जी,
0: किस डाइटरी फॉल्ट के कारण ये डिसीज बढ़ सकते हैं
1: जी,
0: वो बताना प्लीज।
1: चलेगा, तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं हम ओबेसिटी पे। ओबेसिटी ये सारी बीमारियों का जड़ है, ठीक है। अगर आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन अगर 5 से 10 किलो ज्यादा है तो आप ओवरवेट के कैटेगरी में आते हो, और 10 किलो है तो क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 एंड क्लास 3 ओबेसिटी में आता है। जितना ज्यादा लठ्ठपना है उतने बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। आप कोई भी बीमारी का नाम उठा लो वो आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड ही है, लठ्ठपना से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो डायबिटीज का इंडिया हब बनते जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया में जो मैक्सिमम खाना हम खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम इज रोटी सब्जी, ठीक है,
0: कार्बोहाइड्रेट्स,
1: ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ रहा है उसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी ठीक से नहीं बढ़ा पा रही है।
0: कार्बोहाइड्रेट का था ना,
1: हम हमेशा फार्मर भी थे, हम पहले से काम भी करते थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास साइकिल्स थे, हम चल के जाते थे खेतों में काम।
0: हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जरूरी था,
1: लेकिन हमारी पूरी थाली थी ना, रोटी सब्जी दाल चावल दही कोशिंबीर लोणचं पापड़ हे पूर्ण ताट असायचं। अभी क्या हुआ, एक एक चीज हमने हमारे हिसाब से उसको मैन्युपुलेट कर दिया, सब चीजें उड़ा दी, सिर्फ जो सिंपल है रोटी सब्जी और रात को हम चावल और आमटी, ये हमारा लिए सिंपल हो गया। जो कॉम्बिनेशन था सारे न्यूट्रिएंट्स का वो हमने कट डाउन कर दिया, इसके लिए हम रोटी ज्यादा खा रहे हैं या चावल ज्यादा खा रहे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ रहा है तो बेचारा बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पा रही है, जिस वजह से वो शुगर आपकी ब्लड में स्ट्रीम्स में घूमता रहता है, और अगर वो आपका अनवांटेड है तो फिर वो आपकी बॉडी का वेट भी बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे केस में आपका सेम सिनेरियो होना चाहिए कि आपकी रोटी के साथ एक प्रोटीन है या नहीं, सब्जी का क्वांटिटी। अभी इंडिया में इतने लोग हैं जो रोटी को सब्जी सिर्फ ऐसे टच कर करके लोंचे के जैसे खाते हैं, ठीक है, इवन एडल्ट्स। बच्चों को तो क्या ही बोले, जब माँ बाप ही अगर रोटी को ऐसे आचार के जैसे खा रहे हैं तो आपकी बॉडी की फाइबर रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होने वाली है। थाली क्या, आपके एक भाग में आपका रोटी होना चाहिए, एक में सब्जी, एक में दाल और एक में सलाद। अगर ये पूरा बैलेंस होता है तो आपकी न्यूट्रिटिव बैलेंस आपकी सही रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे। एक्सरसाइज इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी फॉर्म का बेसिक, देखो कुछ भी चीज से बढ़ने से अच्छा बेसिक से शुरू करो, बेबी स्टेप्स लेना चालू करो। अगर आप किसी भी चीज का रेजोल्यूशन बनाते हो कि जैसे अभी मुझे तो पतला होना है, मुझे डायबिटीज फ्री होना है, लेकिन एकदम से 10 चीजें आपकी लिस्ट नहीं बनानी है, सबसे पहले आप पानी पीना शुरू करो, फिर 10 मिनट का वॉक, 15 मिनट का वॉक, फिर आधा घंटा, पौना घंटा, ऐसे ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपकी बॉडी को 2-3 महीने जब ये चीज को हो जाए, उसके बाद आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग धीरे धीरे करके शुरू करिए। एकदम से आपको किसी भी चीज पे जंप नहीं करना है, आप फिर थक जाओगे, 2 दिन में डाइट और एक्सरसाइज दोनों छोड़ दोगे। तो उससे अच्छा बेबी स्टेप्स लीजिए, आपको क्या इजी है आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप इजीली कर पाओ उससे स्टार्ट करो। अभी आप बोलोगे कि मैं हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट,

0: प्रपोर्शन बढ़ता है। तो अगर नमक का प्रपोर्शन बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, आपका हार्ट को उसको पंप करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर के केसेस बढ़ रहे हैं।
1: और अभी वापस नमक कौन सा खाना चाहिए? कोई बोलता पिंक सॉल्ट खाओ, कोई आयोडाइज नमक खाओ।
0: नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट बेस्ट है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो आप, या किडनी के पेशेंट हो, या आप नॉर्मल हो, कोई भी अलग टाइप का सॉल्ट नहीं खाना
1: पिंक
0: चाहिए।
1: सॉल्ट वगैरह
0: वंस इन अ वाइल फॉर अ चेंज ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट मार्केट में हम इतने सालों से खा रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है,
1: क्योंकि वो पिंक सॉल्ट वगैरह भी सब डुप्लीकेट ही आता होगा ना।
0: डुप्लीकेट से भी ज्यादा है कि हम हिमालय में नहीं रह रहे हैं, दैट इज पिंक हिमालयन सॉल्ट।
1: ओके,
0: वी आर इन महाराष्ट्र, हाँ राइट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा एटमोसफियर क्या है, उस हिसाब से सोच के खाना चाहिए, ठीक है। तो वो है, और आपकी डाइट में नमक का प्रपोर्शन जरा ध्यान से रखिए, कि जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि दिन में आपको सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए। तो अगर आप एक चीज फ्राइज या बर्गर या पैटी या कुछ एक्स्ट्रा अनहेल्दी जंक खा लेते हो, वहीं पे आपका एक दिन का 5 ग्राम सॉल्ट का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पापड़ के शौकीन हो, अचार के शौकीन हो, तो उसमें भी 3 से 4 ग्राम आपका दिन का सॉल्ट चला जाता है। एक्स्ट्रा चटनीज ले लेके खाना पसंद है, केचप्स पसंद है, फूड लेबल्स पढ़ना शुरू करो कि सोडियम इंटेक कितना है। फूड लेबल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे स्पेसिफिकली इंडियंस को। हमारे नॉर्म्स और US के नॉर्म्स, और मतलब जो आउट ऑफ कंट्री के नॉर्म्स है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। फूड लेबल्स दिए गए हैं कि अगर दिन भर में 5 ग्राम सॉल्ट चाहिए, तो अगर वो पैकेट में कितना है, वो मैगी का मसाला का जो पैकेट मिलता है उसमें कितना सोडियम है, पढ़ना शुरू करो।
1: कुछ कुछ ऐसा कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल है,
0: हाँ,
1: उसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है।
0: हाँ जी, हाँ जी, जैसे पालक है या मेथी है, जब हम बनाते हैं तो बनाते टाइम पे भी नमक कम डालते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्टेड है। तो जब ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं जिसका बहुत ज्यादा हाई है, तो हम सबसे पहले उनको हरे पत्ते वाली सब्जियां रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं,
1: ये कारण के,
0: हाँ, क्योंकि उसमें सोडियम का प्रपोर्शन ज्यादा है, और उससे फिर बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो बीपी कम करने के लिए आपका फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, तेल घी कम होना चाहिए, आपके रूटीन से थोड़ा कम करो, एकदम मत कम करो, थोड़ा वॉक करना शुरू करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, बहुत जोर जोर से अनुलोम विलोम करने की जरूरत नहीं, उसे बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब टीवी पे देख लिया किसी ने अच्छे से जोर जोर से पेट अंदर डाल के व्यायाम कर लिया, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। मेडिसिन ले रहे हो तो रेगुलर लीजिए, डॉक्टर के सलाह के बिना बंद ना कीजिए, ठीक है। और हो सके तो आपका डाइट ठीक है या नहीं वो आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है, आपके डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से। उसके बाद हम आते हैं PCOS, जो आज बहुत कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है।
1: PCOS का मतलब
0: जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको या डिजीज बोला जा सकता है या सिंड्रोम बोला जा सकता है। वो भी मेन क्या होता है, यूट्रस के आसपास जो ओवरीज होती है, ओवरीज में आजू बाजू में सिस्ट बन जाती है, वो सिस्ट के वजह से हॉर्मोन के सिक्रीशंस गड़बड़ा जाते हैं और वो फीमेल को पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये इतना कॉमन हो चुका है कि जैसे 15-16 साल की एज से ही लड़कियों को शुरू हो गया है।
1: आजकल तो 10-12 भी हो गया ना।
0: हाँ, जैसे भी पीरियड्स आना भी शुरू हुए हैं लड़कियों को, 9-10 साल से शुरू हो जाते हैं।
1: 9-10 साल से?
0: हाँ जी, हाँ जी, कोई को 8 साल के भी है। ये क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपोजर, जो हमारा स्क्रीन एक्सपोजर है, सिडेंटरी लाइफ हो चुकी है, बच्चे बाहर खेलने ही नहीं जाते हैं, है ना, और जंक फूड अनहेल्दी फूड खाना बच्चियां प्रेफर करती हैं। जो कल्चर आपके घर में है वही बच्चा फॉलो करेगा। आप जंक खाओगे बच्चा भी जंक खाएगा, आप हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खाओगे तो बच्चे भी नहीं खाने वाले हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं करने वाला है, राइट। तो जो हैबिट्स वो देखते हैं वो फॉलो करते हैं। तो यंग एज में प्यूबर्टी हिट कर रही है लड़कियों को भी और लड़कों को भी, ठीक है, तो वो जंक फूड और एक्सरसाइज के इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। और PCOD को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। वो डैट पर्सन इज लाइक अ पोटैटो, इट्स लाइक अ काउच, वेजिटेबल काउच जो बोलते हैं, वो हिलेगा ही नहीं वो पर्सन। तो उसको हिलाना जरूरी है, उसको बोलना है कि मोटिवेट करना है कि आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करो। लेकिन जितना आप मूव करोगे, जो भी फॉर्म का एक्सरसाइज आपको पसंद है, आपको जुम्बा पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको योगा पसंद है, आपको पावर योगा पसंद है, आप कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज करो, लेकिन खुद को एक्टिव तो रखो। 150 मिनट्स इन अ वीक, उतना आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब हफ्ते में 5 दिन तो भी कम से कम आप करो, 1 से 2 दिन आप रेस्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन PCOD को बैलेंस करने के लिए एक तो एक्सरसाइज और प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए।
1: अच्छा मतलब?
0: मतलब अगर समझो आपकी हाइट इंडियन फीमेल्स की ऑन एन एवरेज 150 सेंटीमीटर, 5 फीट 1 इंच के आसपास अगर हाइट है या 5 फीट है, तो एटलीस्ट 40-45 ग्राम प्रोटीन पर डे आपका जाना चाहिए। अगर आप रोटी सब्जी दिन में 2 से 3 बार खा रहे हो, तो आपका हार्डली 15 ग्राम प्रोटीन जा रहा है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं जा रहा है तो हॉर्मोन्स कैसे बनेंगे? बेसिकली सारा खेल हॉर्मोन्स का है.
1: तो क्या पाउडर खाए?
0: नहीं, आपके डाइट में आप दूध ले सकते हैं, ऑर्गेनिक

0: दूध ले सकते हैं, आलमंड मिल्क बना के ले सकते हैं, या तो फिर आप दाल है, स्प्राउट्स हैं, पल्सेस हैं, उसको दिन में 2 बार 3 बार ऐड करें। जैसे
1: मगर
0: अभी
1: उसमें तो 100 ग्राम में कुछ तो भी 10 ग्राम का
0: शुरू
1: रहता
0: तो
1: है,
0: करो, उतना तो करो,
1: क्योंकि 100 ग्राम तो कोई खा नहीं सकता।
0: 100 ग्राम नहीं खा सकता, दिन में 60 ग्राम तो खा सकते हैं, 2 बार
1: अच्छा।
0: या 3 बार खा सकते हैं, तो उससे आपकी एटलीस्ट उतनी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और अच्छा सोर्स ऑफ आपको अंडा मिल रहा है, तो दिन में 2 अंडे भी ले सकते हैं आप। अभी उसमें भी पीला नहीं खाना है, सफेद नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों खा सकते हैं, एक पूरा भी आप दिन में 2 खा सकते हैं, तो वहीं पे आपके 12 ग्राम प्रोटीन हो जाते हैं। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट जब तक आपका पूरा नहीं होगा, आपके हार्मोन सिक्रीशन नहीं होने वाले। हार्मोन एक टाइप का प्रोटीन है, जब तक प्रोटीन नहीं जाएगा वो हार्मोन कैसे बैलेंस होगा। उसके साथ अच्छा पेट भरने के लिए फाइबर भी चाहिए, जिससे आपका वेट लॉस भी अच्छे से हो। ठीक है
1: बोलते बोलते आधा घंटा हो गया,
0: जी,
1: मैं चाहता हूँ अगले संडे भी इस बारे में हम बात करें,
0: जरूर
1: ये
0: जरूर बात
1: बहुत
0: करेंगे,
1: जरूरी है। दवाई लेने से अच्छा दवाई की तरह हमारा खाना
0: खाना
1: हो।
0: हो। हाँ जी,
1: राम राम मंडली फेड़ोया।

0: सर्व श्रोत्यांना नमस्कार. हमराज कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. अतृप्त मनाचे दिग्दर्शक गुरुदत्त यांच्या अपूर्ण जीवनाच्या कहाणीचा आज दुसरा भाग सादर आहे. अपेक्षांचा अतिरेक प्रगल्भ माणसाला सुद्धा असमाधानाच्या सागरात खोलवर नेतो हे सत्य गुरुदत्त यांचं छोटं जीवन सांगत आहे. ऐकूया एक था प्यासा गुरुदत्त भाग दोन.
1: गुरुदत्त वहीदा के प्यार के चर्चे हर जुबान पर चढ़ गए.
2: हर सुंदर चीज की कल्पना कर सकती हो तुम,
1: लेकिन गीता दत्त ने इन अफवाहों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, नहीं इसका असर अपने पारिवारिक जीवन पर पड़ने दिया. वो कहती कि मैं जितना प्यार गुरुदत्त से करती हूँ, गुरुदत्त भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं. गुरुदत्त उस वक्त किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे. गीता उनकी जिंदगी में तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गाते हुए आईं.

0: लेकिन गुरुदत्त की तकदीर ने उसी वक्त एक बड़ा मोड़ ले लिया। पत्नी गीता दत्त से उनकी लंबे वक्त तक निभ ना सकी। 4 साल बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। गीता से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट गए। उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। गीता दत्त की मासूम मोहब्बत गुरुदत्त वहीदा के प्यार के आड़े आ रही थी। गुरुदत्त बेहद तनाव में रहने लगे।
1: ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के कहां है मुहाफिज खुदी के।
0: अंदर ही अंदर न जाने क्या चीज थी जो उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही थी।
1: तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या।
0: शायद वो सही फैसला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक ओर वहीदा की मोहब्बत थी, गीता से बेवफाई।

0: फिल्म स्टार देवानंद गुरुदत्त के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती उस जमाने में हुई जब वो दोनों ही हिंदी फिल्मों में अपने कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए, लेकिन उनकी दोस्ती में सबसे खास बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को अपना फिल्मी करियर बनाने में भरपूर मदद की।
1: पूरी फिल्मी दुनिया में अगर गुरुदत्त का कोई सबसे करीबी दोस्त था तो वो थे देवानंद। गुरुदत्त और देव साहब में दोस्ती कैसे हुई, इसका वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। दोनों 1945 में फिल्म हम एक हैं से की शूटिंग के दौरान मिले। दोनों की ये पहली फिल्म थी। गुरुदत्त इस फिल्म में कोरियोग्राफी कर रहे थे तो देवानंद अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे।
2: माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई।
3: ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था।
1: इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद और गुरुदत्त दोनों एक ही धोबी को अपने कपड़े दिया करते थे। एक दिन देवानंद ने देखा कि उनकी एक कमीज कम है। उन्हें पता चला कि उनकी एक कमीज गुरुदत्त के पास है, तो वो उनके पास गए। देवानंद ने गुरुदत्त से कहा कि जो कमीज उन्होंने पहन रखी है वो उनकी नहीं है। गुरुदत्त ने कहा, दरअसल उनके पास दूसरी कमीज नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये कमीज पहनी।
4: देवानंद और गुरुदत्त के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे से वायदा किया कि अगर देवानंद कोई फिल्म बनाते हैं तो गुरुदत्त को निर्देशन का जिम्मा देंगे, और अगर गुरुदत्त कोई फिल्म बनाते हैं तो देवानंद को अभिनय का मौका।
1: देवानंद ने जब अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन खोली तो गुरुदत्त को पहली बार सन 1951 में फिल्म बाजी का डायरेक्टर बनाया।

0: एक ऐसा दिन आया जब गुरुदत्त इस दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर चुके थे। गुरुदत्त ने तन्हाई में इस दुनिया को अलविदा कहा। गुरुदत्त की आखिरी रात का एक एक राज का खुलासा किया उनके दोस्त अबरार अलवी ने।
1: ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
2: गुरुदत्त ने अपनी छोटी सी जिंदगी में दो बार जान देने की कोशिश की, लेकिन 9 अक्टूबर 1964 की रात होनी को कुछ और ही मंजूर था। गुरुदत्त ने कई लोगों को फोन किया, अपने पास आने को कहा, लेकिन कोई नहीं आया।

वक्त शाम 7 बजे। 9 अक्टूबर को गुरदत्त के दोस्त और स्क्रिप्ट राइटर अबरार अलवी काफी वक्त उनके साथ थे। वो 7 बजे उनके घर पहुंचे। गुरदत्त बेचैन लेकिन खामोश थे। मुंबई के पेडर रोड में आर्क रॉयल फ्लैट में गुरदत्त के साथ उनका सहायक रतन भी मौजूद था। रतन के मुताबिक गुरदत्त शाम 5:30 बजे से पी रहे थे। वक्त रात के 10 बजे। गुरदत्त ने पत्नी गीता दत्त को फोन किया और कहा कि बेटी से मिलना चाहते हैं। शादी टूटने के कगार पर थी। गीता से नोकझोंक पड़ गई। गुरदत्त का मूड बिगड़ गया और तब उन्होंने कहा, बच्ची को भेज दो या फिर तुम मेरा मरा मुंह देखो। वक्त रात के 12 बजे। रात करीब 12 बजे गुरदत्त खाने के लिए तैयार हुए, लेकिन खाते खाते 1 बज गया। खाने से पहले फिर से शराब पी। तब अबरार अलवी ने गुरदत्त को आखिरी बार देखा। गुरदत्त ने अबरार अलवी से कहा कि वो सोना चाहते हैं और फिर वो अपने रूम में चले गए। वक्त रात के 3 बजे। गुरदत्त के सहायक रतन के मुताबिक गुरदत्त कमरे से बाहर आए और विस्की मांगने लगे। रतन ने जब मना किया तो खुद बोतल ढूंढ ली और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। दरवाजा बंद कर लिया। 10 अक्टूबर 1964 सुबह 10 बजे। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह गीता दत्त ने काफी फोन किए लेकिन गुरदत्त नहीं उठे। दरवाजा तोड़ा गया तो देखा बिस्तर पर गुरदत्त का शव पड़ा था। पास में बोतल और नींद की गोलियों की शीशी थी।

0: शेवटी 1946 सालातल्या शहाजहा सिनेमातलं कवी मजरू सुलतानपुरी आणि संगीतकार नौशाद अली यांचं कुंदनलाल सैगल यांच्या आवाजातलं गाणं निवेदक आणि गायक सलीम मलिक गात आहेत. गाण्या अगोदर त्यांनी केलेलं भाष्य मैत्रीपूर्ण वाटतं. गाण्याचे शब्द आहेत, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना. आता निरोप घेऊया. नमस्कार.
1: अमरत गायक कुंदन लाल सैगल, जिसे हम प्यार से के एल सैगल साहब कहते हैं, पायोनियर, उन्हें भी क्या कहा गया है गायकी की दुनिया का, पार्श्व गायकी की दुनिया का. और के एल सैगल साहब का गाया हुआ एक कमाल का गीत है जो सलीम मलिक साहब पेश कर रहे हैं.
2: नमस्कार दोस्तों, जब ये नगमा मुझे दिया गया तो मुझे लगा कि मैं गा लूंगा, मगर जब प्रैक्टिस के लिए मैंने गाना शुरू किया तो पता चला कि गाया हुआ कहीं शहनशाह के एल सैगल साहब को क्यों कहते हैं. ये गाना ऐसा गाना है जो सालों में कभी किसी गायक को स्टेज पर गाने के लिए मिलता है, और तभी मिलता है जब मेरे जैसा कोई नसीब वाला होता है और सामने कोई यहाँ अमरीश कागर जैसे कोई शोमैन होते हैं, तभी ये नगमा गाने को मिलता है. गम दिए मुश्किल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना. और ये गाने में बहुत ऊंचे दर्जे की उर्दू का इस्तेमाल किया है, तो गाना देने के पहले कुछ दो चार वर्ड्स हैं जो आपको मैं बता दूं. गम दिए मुश्किल मतलब के मुसलसल कंटिन्यूसली गम दिए जाते हैं लोग, हाय हाय ये जालिम जमाना. लॉ मतलब फ्लेम, रूदाद मतलब फ्लाइट, दुर्दशा जिसे कहते हैं. ये वर्ड आने वाले हैं जो थोड़ा याद रख लेना आप तो मजा आएगा. बेदाद मतलब जुल्म, क्रुएलिटी. और माहे नौ मतलब नया चांद, माहे मतलब चांद और नौ मतलब नया. ये मैं खास लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए. थैंक यू.

प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करनी चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखो

नौ रस बहला खुली जाए बंद अकल का।

0: राम राम मंडळी, मी डॉक्टर राजेश नामदेव आहे, म्हणजे तुमचा लाडका बाळू, बाळू ऑन एअर मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मंडळी, आयुष्यभर जेवून जगायचं का औषधं खाऊन जगायचं? आपण आहे ना जेवणाला एंटरटेनमेंट समजायला लागलोय. गेलो, भूक लागली नाही, अरे चांगला पिक्चर पाहायला लागलाय, चला पैसे खिशात पहा, अरे अच्छा खाना दिख रहा है, कोई बोला इधर अच्छा मिलता है, पैसे खा लो. म्हणजे असं पूर्वी म्हणायचे की दोन तास खा, तीन तास लावा, भूक लागली तरच खा, तसा काही आयुष्याचा संबंध राहिला नाही. आणि त्याच्यामुळे औषधांना श्रीमंत करण्याच्या नादात आपण अन्नाशी वैर करून बसलो आणि त्या अतिरेकी अन्नामुळे आपल्याला आजार व्हायला लागले. पण तेच अन्न आपल्यावर कृपा करून आपल्याला चांगलं सुद्धा करू शकतो, याच्यासाठी बोलण्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहे न्यूट्रिशनिस्ट डायटिशियन रिष्टी मेहता. रिष्टी राम राम.
1: राम राम सर, नमस्कार. सगळ्या मंडळींना माझा नमस्कार.
0: रिष्टी, सबसे पहले ठंड शुरू हो रही है
1: जी,
0: बारिश हो गई है
1: जी,
0: तो अभी डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए?
1: ओके, जैसे ऋतु बदल होती है तो आपकी बॉडी को भी उसको यूज टू होने के लिए आपको थोड़ा बॉडी में चेंजेस और डाइट में चेंजेस करना बहुत जरूरी है. जैसे हमने बारिश के सीजन में थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाया, हरे पत्ते वाली सब्जियां कम खाई होगी, अभी गणपति हुए हैं तो हमने मोदक खाए हैं, बहुत सारा फेस्टिव खाना खाया है. तो जब ठंडी की सीजन आ रही है तो हमें हमारी डाइट में कुछ एक्स्ट्रा हाई प्रोटीन वाला, थोड़ा हाई फैट वाला खाना इंक्लूड करना चाहिए. जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हम ठंडी में लड्डू बनाते हैं, बराबर. लेकिन अभी लड्डू की तो बहुत सारी वैरायटी हो गई, हम सिर्फ गोंद के और लड्डू नहीं खाते हैं, राइट. हम अभी फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं, पम्पकिन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, पता नहीं कौन से टाइप्स के सीड्स बनने शुरू हो गए हैं. तो जो ऑथेंटिसिटी है या हमारा जो खाना है, उस हिसाब से ही आपकी डाइट में ठंडी में आपने लड्डू इंक्लूड करने चाहिए. अगर आप नॉर्मल वेट है तो दिन में एक से दो लड्डू खा सकते हैं. वजन आपका ज्यादा है तो दिन में एक छोटा सा ही लड्डू खाइए. किसी भी चीज का ओवरबर्डन, एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक ना करें, ठीक है. और घी और तेल को पूरी तरह से आपकी डाइट में से कम ना करें, थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन में अगर खाते रहेंगे तो ठंडी को वेलकम करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा.
0: रिष्टी, मेरे को एक बात बता, पहले हम लोग बहुत घी खाते थे
1: जी,
0: फिर अचानक भयानक घी के प्रति हमको दुश्मनी करने को
1: हाँ
0: आप लोगों ने मंजूर किया. आप लोगों ने मतलब साइंस ने.
1: जी, साइंस ने.
0: और आप वापस कह रहे कि दिन में दो चम्मच तो घी खाना ही चाहिए घर का बना हुआ.
1: जी देखो, घी का नेचर क्या है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है. सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में सबसे कम प्रपोर्शन में होने चाहिए. दूसरे जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम पॉलीअनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड बोलते हैं, जो बेसिकली वेजिटेबल ऑयल में से आता है, या आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें से 3 portions वो होना चाहिए और दिन में एक ही पोर्शन आपका सैचुरेटेड फैट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 to 2 teaspoons.
0: सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का मतलब?
1: सैचुरेटेड फैट जो समझ लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी अगर वो थिक है, जैसे घी है, बटर है, लोनी है, चीज है, तो ये सब चीजें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कड़क रहती है, उसका सॉलिड होता है नेचर, तो उस चीज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. और मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब जो वेजिटेबल ऑयल है रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल है, इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नहीं होता है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. तो दोनों चीज का बैलेंस बॉडी को चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ वेजिटेबल ऑयल ही खाना है या सिर्फ घी ही खाना है. अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अरे घी तो अभी बहुत अच्छा है, सब सब्जियां भी घी में बनाते हो, दाल भी घी में बना रहे हो, रोटी भी घी में बना रहे हो. नहीं, उतना हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना आपकी बॉडी को बचेगा
0: नहीं.
1: नहीं नहीं नहीं, 2 चम्मच से या 1 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर श्योर. हाँ, एज ग्रुप भी मैटर करती है, कौन से एज ग्रुप में हो आप. लेकिन जो जनरली अभी इंडियन पॉपुलेशन हम देख रहे हैं तो ओबेसिटी की तरफ बढ़ रही है, लठ्ठपना जो बोलते हैं उसमें बढ़ रही है, तो पेट का घेरा तो सबका बड़ा हुआ है, ठीक है ना. तो उस मामले में अगर आपका पेट का घेरा बड़ा हुआ है तो आपको 1 से 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. अगर आप यंग एज में ग्रुप में हो, जैसे आप टीनेज में हो या बच्चे हो, तो 3 से 4 चम्मच भी दिन में घी खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
0: वो बंद कर सकते हैं.
1: वो बट ग्रोइंग एज में है ना.
0: अच्छा.
1: तो उनको उतना घी अलाउड है. जैसे हम 25-30 क्रॉस कर लेते हैं तो उसमें हमारा 2 चम्मच पे ही रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और जैसे एज बढ़ेगी तो आप 1 चम्मच पे भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. तो उतनी ही जरूरत है. कोई भी चीज का फैड या आप यूट्यूब पे देख के बोल रहे हो कि घी वाली कॉफी पियो या घी वाला ये खाओ, नहीं होता है. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी मेन जरूरत है.
0: और हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं
1: जी,
0: तो महाराष्ट्र के लोगों ने तेल कौन सा खाना चाहिए?
1: तेल 3 प्रकार के होते हैं. एक तो होता है फिल्टर्ड, रिफाइंड और कच्ची घानी का, या हम जो बोलते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल, जो अभी आजकल सब मार्केट में बहुत इजीली मिल रहा है। तो अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो शेंगदाने का तेल सबसे अच्छा है, लेकिन जैसे उसमें भी थोड़े से मुफा पुफा का वेरिएशन रहता है, तो मैं बोलूंगी हर एक टाइप का ऑयल आपको चेंज कर करके यूज करना चाहिए। अगर आप सैचुरेटेड खा रहे हो या आप कोल्ड प्रेस खा रहे हो या फिल्टर्ड खा रहे हो, तीनों में फिल्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे कच्ची घानी का होगा तो उसमें थोड़ा इम्प्योरिटीज होती है, लेकिन वो प्योर है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है।
0: मूंगफली तो अपन एज इट इज खाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज कैसे आएगी?
1: रहता है ना, उसके फाइटेट्स रहते हैं, उसका स्किन रहता है, वो निकाल के फिर तेल बनता है ना।
0: नहीं, मगर अपन मूंगफली तो खा लेते हैं
1: उतना कम प्रपोर्शन, लेकिन जब हम तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रपोर्शन बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। और क्वांटिटी हम ध्यान में रहे, अगर हमको लगता है कच्ची घानी का तेल अच्छा है, उसको ब्रांडेड किया गया है, इस तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो हम वो ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
0: समझ लो, चार बंदों की फैमिली है,
1: जी,
0: दो बच्चे, माँ बाप, तो उन्होंने महीने में
1: कितना तेल,
0: कितना शेंगदाने का तेल कच्ची घानी का
1: जी
0: कोल्ड प्रेस ऑयल लाना चाहिए घर में?
1: जी, सबसे पहले कोल्ड प्रेस रहे या कोई भी टाइप का ऑयल रहे, प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट है। अगर आप चार लोगों का पूछ रहे हो तो महीने में 2 किलो से ज्यादा नहीं इस्तेमाल होना,
0: बिल्कुल
1: भी नहीं। जैसे बच्चों का मैंने बताया तो आप उसमें घी ऐड कर सकते हो।
0: तो कहते ना यार कि अगर तुम ऑयल घी कम खाओ तो शरीर में एक ड्राइनेस आ जाता है, स्निग्धता नहीं रहती है।
1: जी, आपको अगर एक मील खा रहे हो, अगर उसमें 5 ग्राम तेल है या 1 टीस्पून ऑयल है और 1/2 टीस्पून घी है, तो इतना इनाफ है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आप 3 मील्स खा रहे हो तो 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच घी, ऐसे आपका चला जाता है, उतना आपकी बॉडी को इनाफ है। लुब्रिकेशन के लिए बोलो, ऑर्गन मेंटेनेंस के लिए बोलो, ब्रेन हेल्थ के लिए बोलो, जॉइंट हेल्थ के लिए बोलो, या न्यूट्रिटिव एब्जॉर्प्शन के लिए।
0: लोग घी बहुत खाते हैं इसलिए बहुत हुशियार रहते हैं मैथमेटिक्स में, व्यापार में, वो सही है क्या?
1: ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके लिए हमें फ्लैक्सीड्स का ऑयल हमारे डाइट में लेना चाहिए, फ्लैक्सीड्स खाने चाहिए।
0: फ्लैक्सीड्स को जवस, में
1: जवस, जवस, ओके। ठीक है,
0: तो जवस हमारे डाइट में पहले से ही था,
1: लेकिन उसकी चटनी बनती थी, है ना?
0: तो तेल लाना चाहिए।
1: हाँ, वो रॉ फॉर्म में जब आप खाते हो, चटनी क्यों बनती है कि उसका जो फाइटेट्स है वो कट डाउन हो जाता है जब आप उसको मिक्सी में से ब्लेंड करते हो। अगर आप डायरेक्ट फ्लैक्सीड्स रोस्ट करके खा रहे हो तो आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं जितना आप उसको कोसली ग्राइंड करके या थोड़ा सा कूट करके जैसे बोलते हैं वैसे आप इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स है उसके, राइट? तो कोई भी तेल घी खाओ लेकिन प्रमाण में खाओ, ठीक है? अगर कोई भी चीज का मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मुफा ज्यादा है, पुफा ज्यादा है,
0: इन शॉर्ट एक बंदे ने महीने में 0.5 लीटर
1: से ज्यादा नहीं लेना चाहिए,
0: और घी
1: सब मिला के,
0: क्या बात कर रही
1: है? हाँ हाँ, घी तेल मिला के, दैट्स इनफ। यस यस, स्ट्रिक्टली जिस तरह से इंडिया का रेट बढ़ रहा है, फेस्टिवल के दिन हो तो फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा कर लीजिएगा, थोड़ा डाइट आपको मेंटेन करना, कैलोरी बैलेंस करना बहुत जरूरी है,
0: एक्सरसाइज भी करनी।
1: हाँ, एक्सरसाइज भी जरूरी है।
0: अच्छा।
1: पहले जब हम खाते थे ना, सुबह प्रभात फेरी के लिए जाते थे, है ना, भगवान के दर्शन को जाते थे, हिल चढ़ते थे, फिर आके हम ये सब खाते थे, तो ऑलरेडी हमारी कैलोरी बर्निंग हो चुकी रहती थी, तो वो बैलेंसिंग रहता था। अब हम उठ के सीधा फराड़ खाना शुरू कर देते हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है, फिर आप बोलते हो कि वेट बढ़ गया करके।
0: अच्छा, अभी ये तो हुआ विंटर्स का डाइट,
1: जी,
0: और कुछ बोलना है वो विंटर्स के डाइट के बारे में?
1: नहीं, ठीक।
0: और वेज नॉनवेज के बारे में क्या कहना है तुम्हें?
1: वेज नॉनवेज में अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप ऑफ कोर्स वेजिटेरियन ही स्टिक करिए। नॉनवेज के केस में ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि एक तो डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे बढ़ गए इंडिया में, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ चुके हैं। तो अगर आपका जो नॉनवेज खाने का या पचाने का तरीका ठीक नहीं है तो आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, जिससे आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ सकते हैं। जो कुछ टाइम पहले रिसेंटली एक डाइट बहुत वायरल हुआ था जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करके सुना था शायद,
0: केटोजेनिक,
1: नहीं नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट,
0: डाइट का नाम ही एंटी इन्फ्लेमेटरी था।
1: तो बॉडी में सूजन होती है ना, इन्फ्लेमेशन होती है, तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी की सूजन कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपका वेट लॉस ईजी हो जाता है। तो उसमें नॉनवेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। क्योंकि पहले के जमाने में जब हंटर गैदरर बोलते थे कि हम जब सिर्फ 4-6 महीना हंटिंग करते थे, उसके बाद बैठते थे, खाते थे, फिर वापस हंटिंग के लिए जाते थे, राइट, तो तब नॉनवेज खाना समझ में आता था। या पुराने जमाने में जब हमारे पे वार त्यौहार होते थे, बलि चढ़ाते थे, तो वो कैसे दिवाली में या दशहरे में कभी एक बार वो कट करके, वो स्लॉटर करके फिर वो एनिमल को खाया जाता था, या गांव खेड़े में जाके वो गाउठी चिकन बनता था, तो उस टाइप का चिकन अगर आप 6 महीने में 3 महीने में 1 महीने में एक बार खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बॉयलर मिल रहा है या प्रोसेस्ड मिल रहा है,
0: इंजेक्शन वाला चिकन,
1: जी एब्सोल्युटली इंजेक्शन वाला है,
0: ये फिर मेरे एग्स,
1: हाँ
0: अभी वो चिकन्स को
1: जी
0: पूरा हार्मोन्स पे बढ़ाते हैं, इंजेक्शन पे बढ़ाते हैं,
1: जी जी,
0: तो उसके एग्स, एग में भी तो आता होगा ना?
1: ऑफ कोर्स आता है ना, ऑफ कोर्स आता है।
0: तो फिर ये जो रिकमेंड करते हैं कि कंप्लीट फूड है एग, इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें?
1: अगर वेजिटेरियन मतलब सॉरी वो ऑर्गेनिक है,
0: ऑर्गेनिक मिलने की
1: मतलब गांव की है,
0: मिलता है,
1: ढूंढना पड़ेगा अगर आपको छाना है,
0: पालना पड़ेगा,
1: हाँ वो तो बेस्ट ही रहेगा अगर आप पालते हो तो, ठीक है, लेकिन आज के जमाने में मुझे लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो प्योर अगर मिल रहा है तो खाओ, अगर नहीं तो महीने में एक बार खाओ, ज्यादा मत खाओ,
0: एक भी महीने में एक बार,
1: हाँ अगर आपको हेल्थ प्यारी है,
0: सीरियसली,
1: हाँ जी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ज्यादा तो आप प्योर ढूंढ के, ऑर्गेनिक ढूंढ के ले सकते हैं, जो गाउठी अंडे बोलते हैं या गाउठी चिकन बोलते हैं। जैसे अभी ये चिकन जो आपको मार्केट में मिलते हैं, आई एम नॉट 100% श्योर इस पे, लेकिन उनको इंजेक्शन, जैसे आपने बोला हार्मोन इंजेक्शन देते हैं,
0: एग में भी हार्मोन्स आ जाते हैं,
1: हाँ जी है,
0: हो गया, रिसर्च हो गया।
1: देखो कोई भी रिसर्च उठा लो उस पे स्पॉन्सर्स रहते हैं,
0: अच्छा,
1: तो आप उस पे 100% लिए नहीं बोल सकते हो कि वो कौन से एज ग्रुप के लिए किया गया है, कौन से एरिया के लिए किया है। अगर आप रिसर्चेस देखते हो,
0: फॉरेन में थोड़े स्ट्रिक्ट है, हमारे हाँ, इधर की चिकन को जो खिलाते हैं
1: जी, और जो रिसर्चेस मेनली होते थे ना ये चिकन का छोड़ के मैं अगर बात करूं, तो पूरा मेल्स पे होते थे, फीमेल्स पे अभी अभी होना शुरू हुआ है, जो मेडिकेशंस जो बनाई गई है वो ही मेडिकेशंस फीमेल को देते हैं आज भी, ठीक है। तो वो जो रिसर्च है वो कहाँ से है, कितना ऑथेंटिक है, वो जानना जरूरी है। वो चिकन को जो इंजेक्शन दिया गया है उसके बाद अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो गया है, उसके बाद वो आपको मार्केट में मिलता है। तो जस्ट इमेजिन आप कौन से टाइप का चिकन खा रहे हो, सब चीज में नहीं होगा शायद, लेकिन जो ओपनली मिलता है शायद वहाँ पे जरूर ये चीज हो सकती है।
0: ऋषि अभी तुम आई हो डाइट और डिसीजेस पे,
1: हाँ जी,
0: तो मेरे को एक बात बताओ, यू डिसाइड द डिसीजेस और उस पे किस कारण होता है,
1: अच्छा,
0: उसमें डाइटरी इंटेक्स कैसे सुधारनी चाहिए
1: जी,
0: किस डाइटरी फॉल्ट के कारण ये डिसीज बढ़ सकते हैं वो बताना प्लीज।
1: चलेगा, तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं हम ओबेसिटी पे। ओबेसिटी ये सारी बीमारियों का जड़ है, ठीक है। अगर आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन अगर 5 से 10 किलो ज्यादा है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हो, और 10 किलो है तो Class 1 ओबेसिटी, Class 2 एंड Class 3 ओबेसिटी में आता है। जितना ज्यादा लट्ठपना है उतने बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। आप कोई भी बीमारी का नाम उठा लो वो आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड ही है, लट्ठपना से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो डायबिटीज का इंडिया हब बनते जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया में जो मैक्सिमम खाना हम खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम इज रोटी सब्जी, ठीक है,
0: कार्बोहाइड्रेट्स,
1: ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ रहा है उसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी ठीक से नहीं बढ़ा पा रही है।
0: कार्बोहाइड्रेट का था ना,
1: हम हमेशा फार्मर भी थे, हम पहले से काम भी करते थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास साइकिल्स थे, हम चल के जाते थे,
0: तो
1: खेतों में काम,
0: हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जरूरी था,
1: लेकिन हमारी पूरी थाली थी ना, रोटी सब्जी दाल चावल दही कोशिंबीर लोणचं पापड़ हे पूर्ण ताट असायचं। अभी क्या हुआ, एक एक चीज हमने हमारे हिसाब से उसको मैन्युपुलेट कर दिया, सब चीजें उड़ा दी, सिर्फ जो सिंपल है रोटी सब्जी और रात को हम चावल और आमटी, ये हमारा लिए सिंपल हो गया। जो कॉम्बिनेशन था सारे न्यूट्रिएंट्स का वो हमने कट डाउन कर दिया, इसके लिए हम रोटी ज्यादा खा रहे हैं या चावल ज्यादा खा रहे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ रहा है तो बेचारा बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पा रही है, जिस वजह से वो शुगर आपकी ब्लड में स्ट्रीम्स में घूमता रहता है, और अगर वो आपका अनवांटेड है तो फिर वो आपकी बॉडी का वेट भी बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे केस में आपका सेम सिनारी होना चाहिए कि आपकी रोटी के साथ एक प्रोटीन है या नहीं, सब्जी का क्वांटिटी, अभी इंडिया में इतने लोग हैं जो रोटी को सब्जी सिर्फ ऐसे टच कर करके लोंचे के जैसे खाते हैं, ठीक है, इवन एडल्ट्स, बच्चों को तो क्या ही बोले, जब माँ बाप ही अगर रोटी को ऐसे आचार के जैसे खा रहे हैं तो आपकी बॉडी की फाइबर रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होने वाली है। थाली क्या आपके एक भाग में आपका रोटी होना चाहिए, एक में सब्जी, एक में दाल और एक में सलाद, अगर ये पूरा बैलेंस होता है तो आपकी न्यूट्रिटिव बैलेंस आपकी सही रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे। एक्सरसाइज इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी फॉर्म का बेसिक, देखो कुछ भी चीज से बढ़ने से अच्छा बेसिक से शुरू करो, बेबी स्टेप्स लेना चालू करो। अगर आप किसी भी चीज का रेजोल्यूशन बनाते हो कि जैसे अभी मुझे तो पतला होना है, मुझे डायबिटीज फ्री होना है, लेकिन एकदम से 10 चीजें आपकी लिस्ट नहीं बनानी है, सबसे पहले आप पानी पीना शुरू करो, फिर 10 मिनट का वॉक, 15 मिनट का वॉक, फिर आधा घंटा, पौना घंटा, ऐसे ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपकी बॉडी को 2-3 महीने जब ये चीज को हो जाए, उसके बाद आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग धीरे धीरे करके शुरू करिए। एकदम से आपको किसी भी चीज पे जंप नहीं करना है, आप फिर थक जाओगे, 2 दिन में डाइट और एक्सरसाइज दोनों छोड़ दोगे। तो उससे अच्छा बेबी स्टेप्स लीजिए, आपको क्या इजी है आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप इजीली कर पाओ उससे स्टार्ट करो। अभी आप बोलोगे कि मैं हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगी, उस टाइम पे एक्चुअली शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी वो लाइफस्टाइल हो सकती है। ठीक है, हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। आज इंडिया में ब्लड प्रेशर का जो काउंट है या जो भी हार्ट ओरिएंटेड डिजीज है, हम देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उसका सबसे मेन रीजन है ओबेसिटी और स्ट्रेस। और जो हम जंक फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे सॉसेस, केचप्स, फिर हम बहुत सारे अचार पापड़ बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अगर खा लेते हैं, तो बॉडी में सोडियम का प्रपोर्शन बढ़ता है। तो अगर नमक का प्रपोर्शन बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, आपका हार्ट को उसको पंप करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर के केसेस बढ़ रहे हैं।
0: और तो, अभी वापस नमक कौन सा खाना चाहिए? कोई बोलता पिंक सॉल्ट खाओ, कोई आयोडाइज नमक खाओ।
1: नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट बेस्ट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो आप या किडनी के पेशेंट हो या आप नॉर्मल हो, कोई भी अलग टाइप का सॉल्ट नहीं खाना
0: पिंक
1: चाहिए।
0: सॉल्ट वगैरह
1: वंस इन अ वाइल फॉर अ चेंज ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट मार्केट में हम इतने सालों से खा रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है,
0: क्योंकि वो पिंक सॉल्ट वगैरह भी सब डुप्लीकेट ही आता होगा ना।
1: डुप्लीकेट से भी ज्यादा है कि हम हिमालय में नहीं रह रहे हैं, दैट इज पिंक हिमालयन सॉल्ट,
0: ओके,
1: वी आर इन महाराष्ट्र, हाँ राइट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा एटमोसफियर क्या है, उस हिसाब से सोच के खाना चाहिए। ठीक है, तो वो है। और आपकी डाइट में नमक का प्रपोर्शन जरा ध्यान से रखिए, कि जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि दिन में आपको सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए। तो अगर आप एक चीज फ्राइज या बर्गर या पैटी या कुछ एक्स्ट्रा अनहेल्दी जंक खा लेते हो, वहीं पे आपका एक दिन का 5 ग्राम सॉल्ट का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पापड़ के शौकीन हो, अचार के शौकीन हो, तो उसमें भी 3-4 ग्राम आपका दिन का सॉल्ट चला जाता है। एक्स्ट्रा चटनीज ले लेके खाना पसंद है, केचप्स पसंद है, फूड लेबल्स पढ़ना शुरू करो कि सोडियम इनटेक कितना है। फूड लेबल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे स्पेसिफिकली इंडियंस को, हमारे नॉर्म्स और US के नॉर्म्स और मतलब जो आउट ऑफ कंट्री के नॉर्म्स है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। फूड लेबल्स दिए गए हैं कि अगर दिन भर में 5 ग्राम सॉल्ट चाहिए, तो अगर वो पैकेट में कितना है, वो मैगी का मसाला का जो पैकेट मिलता है उसमें कितना सोडियम है, पढ़ना शुरू करो।
0: कुछ कुछ ऐसा कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल है, हाँ, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, जैसे पालक है या मेथी है, जब हम बनाते हैं तो बनाते टाइम पे भी नमक कम डालते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्टेड है। तो जब ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं जिसका बहुत ज्यादा हाई है, तो हम सबसे पहले उनको हरे पत्ते वाली सब्जियां रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं,
0: ये कारण के,
1: हाँ, क्योंकि उसमें सोडियम का प्रपोर्शन ज्यादा है और उससे फिर बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो बीपी कम करने के लिए आपका फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, तेल घी कम होना चाहिए, आपके रूटीन से थोड़ा कम करो, एकदम मत कम करो, थोड़ा वॉक करना शुरू करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, बहुत जोर जोर से अनुलोम विलोम करने की जरूरत नहीं, उसे बीपी बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब टीवी पे देख लिया किसी ने अच्छे से जोर जोर से पेट अंदर डाल के व्यायाम कर लिया, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, मेडिसिन ले रहे हो तो रेगुलर लीजिए, डॉक्टर के सलाह के बिना बंद ना कीजिए। ठीक है, और हो सके तो आपका डाइट ठीक है या नहीं वो आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है, आपके डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से। उसके बाद हम आते हैं PCOS, जो आज बहुत कॉमन है फीमेल्स में। ठीक है,
0: PCOS का मतलब
1: जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको या डिजीज बोला जा सकता है या सिंड्रोम बोला जा सकता है। वो भी मेन क्या होता है, यूट्रस के आसपास जो ओवरीज होती है, ओवरीज में आजू बाजू में सिस्ट बन जाती है, वो सिस्ट के वजह से हॉर्मोन के सिक्रीशंस गड़बड़ा जाते हैं और वो फीमेल को पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये इतना कॉमन हो चुका है कि जैसे 15-16 साल की एज से ही लड़कियों को शुरू हो गया है।
0: आजकल तो 10-12 भी हो गया ना।
1: हाँ, जैसे भी पीरियड्स आना भी शुरू हुए हैं लड़कियों को, 9-10 साल से शुरू हो जाते हैं।
0: 9-10 साल से?
1: हाँ जी, हाँ जी, कोई को 8 साल के भी है। ये क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपोजर, जो हमारा स्क्रीन एक्सपोजर है, सेडेंटरी लाइफ हो चुकी है, बच्चे बाहर खेलने ही नहीं जाते हैं, है ना, और जंक फूड अनहेल्दी फूड खाना बच्चियां प्रेफर करती हैं। जो कल्चर आपके घर में है वही बच्चा फॉलो करेगा, आप जंक खाओगे बच्चा भी जंक खाएगा, आप हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खाओगे तो बच्चे भी नहीं खाने वाले हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं करने वाला है, राइट। तो जो हैबिट्स वो देखते हैं वो फॉलो करते हैं। तो यंग एज में प्यूबर्टी हिट कर रही है लड़कियों को भी और लड़कों को भी, ठीक है, तो वो जंक फूड और एक्सरसाइज के इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। और पीसीओडी को बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज. वो दैट पर्सन इज लाइक अ पोटैटो, इट्स लाइक अ काउच, वेजिटेबल काउच जो बोलते हैं. वो हिलेगा ही नहीं वो पर्सन, तो उसको हिलाना जरूरी है. उसको बोलना है कि मोटिवेट करना है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरू करो. लेकिन जितना आप मूव करोगे, जो भी फॉर्म का एक्सरसाइज आपको पसंद है, आपको जुम्बा पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको योगा पसंद है, आपको पावर योगा पसंद है, आप कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज करो, लेकिन खुद को एक्टिव तो रखो. 150 मिनट्स इन अ वीक, उतना आपका टारगेट होना चाहिए. मतलब हफ्ते में 5 दिन तो भी कम से कम आप करो, 1 से 2 दिन आप रेस्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पीसीओडी को बैलेंस करने के लिए एक तो एक्सरसाइज और प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए.
0: अच्छा मतलब?
1: मतलब अगर समझो आपकी हाइट इंडियन फीमेल्स की ऑन एन एवरेज 150 सेंटीमीटर, 5 फीट 1 इंच के आसपास अगर हाइट है या 5 फीट है, तो एटलीस्ट 40 to 45 ग्राम प्रोटीन पर डे आपका जाना चाहिए. अगर आप रोटी सब्जी दिन में 2 से 3 बार खा रहे हो, तो आपका हार्डली 15 ग्राम प्रोटीन जा रहा है. तो अगर प्रोटीन ही नहीं जा रहा है तो हॉर्मोन्स कैसे बनेंगे? बेसिकली सारा खेल हॉर्मोन्स का है.
0: तो क्या पाउडर खाए?
1: नहीं नहीं, आपकी डाइट में आप दूध ले सकते हैं, ऑर्गेनिक दूध ले सकते हैं, आलमंड मिल्क बना के ले सकते हैं, या तो फिर आप दाल है, स्प्राउट्स हैं, पल्सेस हैं, उसको दिन में 2 बार 3 बार ऐड करें. जैसे अभी
0: उसमें तो 100 ग्राम में कुछ तो भी 10 ग्राम
1: शुरू तो करो, उतना तो करो,
0: क्योंकि 100 ग्राम तो कोई खा नहीं सकता.
1: 100 ग्राम नहीं खा सकता, दिन में 60 ग्राम तो खा सकते हैं 2 बार.
0: अच्छा,
1: या 3 बार खा सकते हैं. तो उससे आपकी एटलीस्ट उतनी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और अच्छा सोर्स ऑफ आपको अंडा मिल रहा है, तो दिन में 2 अंडे भी ले सकते हैं आप. अभी उसमें भी पीला नहीं खाना है, सफेद नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप दोनों खा सकते हैं, एक पूरा भी आप दिन में 2 खा सकते हैं, तो वहीं पे आपके 12 ग्राम प्रोटीन हो जाते हैं. तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट जब तक आपका पूरा नहीं होगा, आपके हार्मोन सिक्रीशन नहीं होने वाले. हार्मोन एक टाइप का प्रोटीन है, जब तक प्रोटीन नहीं जाएगा वो हार्मोन कैसे बैलेंस होगा? उसके साथ अच्छा पेट भरने

0: सर्व श्रोत्यांना नमस्कार। हमराज कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे। अतृप्त मनाचे दिग्दर्शक गुरुदत्त यांच्या अपूर्ण जीवनाच्या कहाणीचा आज दुसरा भाग सादर आहे। अपेक्षांचा अतिरेक प्रगल्भ माणसाला सुद्धा असमाधानाच्या सागरात खोलवर नेतो हे सत्य गुरुदत्त यांचं छोटं जीवन सांगत आहे। ऐकूया एक था प्यासा गुरुदत्त भाग दोन।
1: गुरुदत्त वहीदा के प्यार के चर्चे हर जुबान पर चढ़ गए।
2: हर सुंदर चीज की कल्पना कर सकती हो तुम,
1: लेकिन गीता दत्त ने इन अफवाहों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, नहीं इसका असर अपने पारिवारिक जीवन पर पड़ने दिया। वो कहती कि मैं जितना प्यार गुरुदत्त से करती हूं, गुरुदत्त भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। गुरुदत्त उस वक्त किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। गीता उनकी जिंदगी में तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गाते हुए आईं।

0: लेकिन गुरुदत्त की तकदीर ने उसी वक्त एक बड़ा मोड़ ले लिया। पत्नी गीता दत्त से उनकी लंबे वक्त तक निभ ना सकी। 4 साल बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। गीता से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट गए। उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। गीता दत्त की मासूम मोहब्बत गुरुदत्त वहीदा के प्यार के आड़े आ रही थी। गुरुदत्त बेहद तनाव में रहने लगे।
1: ये लुटते हुए कारवा जिंदगी के कहां है मुहाफिज खुदी के।
0: अंदर ही अंदर न जाने क्या चीज थी जो उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही।
1: तो क्या है ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या।
0: शायद वो सही फैसला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक ओर वहीदा की मोहब्बत थी, गीता से बेवफाई।

0: फिल्म स्टार देवानंद गुरुदत्त के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती उस जमाने में हुई जब वो दोनों ही हिंदी फिल्मों में अपने कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए, लेकिन उनकी दोस्ती में सबसे खास बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को अपना फिल्मी करियर बनाने में भरपूर मदद की।
1: पूरी फिल्मी दुनिया में अगर गुरुदत्त का कोई सबसे करीबी दोस्त था तो वो थे देवानंद। गुरुदत्त और देव साहब में दोस्ती कैसे हुई, इसका वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। दोनों 1945 में फिल्म हम एक हैं से की शूटिंग के दौरान मिले। दोनों की ये पहली फिल्म थी। गुरुदत्त इस फिल्म में कोरियोग्राफी कर रहे थे तो देवानंद अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे।
2: माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई।
3: ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था।
1: इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद और गुरुदत्त दोनों एक ही धोबी को अपने कपड़े दिया करते थे। एक दिन देवानंद ने देखा कि उनकी एक कमीज कम है। उन्हें पता चला कि उनकी एक कमीज गुरुदत्त के पास है, तो वो उनके पास गए। देवानंद ने गुरुदत्त से कहा कि जो कमीज उन्होंने पहन रखी है वो उनकी नहीं है। गुरुदत्त ने कहा, दरअसल उनके पास दूसरी कमीज नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये कमीज पहनी।
4: देवानंद और गुरुदत्त के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे से वायदा किया कि अगर देवानंद कोई फिल्म बनाते हैं तो गुरुदत्त को निर्देशन का जिम्मा देंगे, और अगर गुरुदत्त कोई फिल्म बनाते हैं तो देवानंद को अभिनय का मौका।
1: देवानंद ने जब अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन खोली तो गुरुदत्त को पहली बार सन 1951 में फिल्म बाजी का डायरेक्टर बनाया।

0: एक ऐसा दिन आया जब गुरुदत्त इस दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर चुके थे। गुरुदत्त ने तन्हाई में इस दुनिया को अलविदा कहा। गुरुदत्त की आखिरी रात का एक एक राज का खुलासा किया उनके दोस्त अबरार अलवी ने।
1: ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
2: गुरुदत्त ने अपनी छोटी सी जिंदगी में दो बार जान देने की कोशिश की, लेकिन 9 अक्टूबर 1964 की रात होनी को कुछ और ही मंजूर था। गुरुदत्त ने कई लोगों को फोन किया, अपने पास आने को कहा, लेकिन कोई नहीं आया।

वक्त शाम 7 बजे। 9 अक्टूबर को गुरदत्त के दोस्त और स्क्रिप्ट राइटर अबरार अलवी काफी वक्त उनके साथ थे। वो 7 बजे उनके घर पहुंचे। गुरदत्त बेचैन लेकिन खामोश थे। मुंबई के पेडर रोड में आर्क रॉयल फ्लैट में गुरदत्त के साथ उनका सहायक रतन भी मौजूद था। रतन के मुताबिक गुरदत्त शाम 5:30 बजे से पी रहे थे। वक्त रात के 10 बजे। गुरदत्त ने पत्नी गीता दत्त को फोन किया और कहा कि बेटी से मिलना चाहते हैं। शादी टूटने के कगार पर थी। गीता से नोकझोंक पड़ गई। गुरदत्त का मूड बिगड़ गया और तब उन्होंने कहा, बच्ची को भेज दो या फिर तुम मेरा मरा मुंह देखो। वक्त रात के 12 बजे। रात करीब 12 बजे गुरदत्त खाने के लिए तैयार हुए, लेकिन खाते खाते 1 बज गया। खाने से पहले फिर से शराब पी। तब अबरार अलवी ने गुरदत्त को आखिरी बार देखा। गुरदत्त ने अबरार अलवी से कहा कि वो सोना चाहते हैं और फिर वो अपने रूम में चले गए। वक्त रात के 3 बजे। गुरदत्त के सहायक रतन के मुताबिक गुरदत्त कमरे से बाहर आए और विस्की मांगने लगे। रतन ने जब मना किया तो खुद बोतल ढूंढ ली और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। दरवाजा बंद कर लिया। 10 अक्टूबर 1964 सुबह 10 बजे। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह गीता दत्त ने काफी फोन किए, लेकिन गुरदत्त नहीं उठे। दरवाजा तोड़ा गया तो देखा बिस्तर पर गुरदत्त का शव पड़ा था। पास में बोतल और नींद की गोलियों की शीशी थी।

0: शेवटी 1946 सालातल्या शहाजहा सिनेमातलं कवी मजरू सुलतानपुरी आणि संगीतकार नौशाद अली यांचं कुंदनलाल सैगल यांच्या आवाजातलं गाणं निवेदक आणि गायक सलीम मलिक गात आहेत. गाण्याअगोदर त्यांनी केलेलं भाष्य मैत्रीपूर्ण वाटतं. गाण्याचे शब्द आहेत, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना. आता निरोप घेऊया. नमस्कार.
1: अमृत गायक कुंदन लाल साइगल, जिसे हम प्यार से के एल साइगल साहब कहते हैं, पायोनियर, उन्हें भी क्या कहा गया है गायकी की दुनिया का, पार्श्व गायकी की दुनिया का. और के एल साइगल साहब का गाया हुआ एक कमाल का गीत है जो सलीम मलिक साहब पेश कर रहे हैं.
2: नमस्कार दोस्तों, जब ये नगमा मुझे दिया गया तो मुझे लगा कि मैं गा लूंगा, मगर जब प्रैक्टिस के लिए मैंने गाना शुरू किया तो पता चला कि गायब के शहनशाह के एल साइगल साहब को क्यों कहते हैं. ये गाना ऐसा गाना है जो सालों में कभी किसी गायक को स्टेज पर गाने के लिए मिलता है, और तभी मिलता है जब मेरे जैसा कोई नसीब वाला होता है और सामने कोई या अमरीश टागर जैसे कोई शोमैन होते हैं, तभी ये नगमा गाने को मिलता है. गम दिए मुश्किल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना. और ये गाने में बहुत ऊंचे दर्जे की उर्दू का इस्तेमाल किया है, तो गाना देने के पहले कुछ दो चार वर्ड्स हैं जो आपको मैं बता दूं. गम दिए मुश्किल मतलब के मुसलसल कंटिन्यूसली गम दिए जाते हैं लोग, हाय हाय ये जालिम जमाना. लॉ मतलब फ्लेम, रूदाद मतलब फ्लाइट, दूरदर्शा जिसे कहते हैं, ये वर्ड आने वाले हैं जो थोड़ा याद रख लेना आप तो मजा आएगा. बेदाद मतलब जुल्म क्रुएलिटी, और माहे नौ मतलब नया चांद, माहे मतलब चांद और नौ मतलब नया. ये मैं खास लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए. थैंक यू.

0: फिर हम पूछेंगे बाबू दिन है कि रात है।
1: ओ, तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं।

0: वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: हाँ, ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।